विचार का चना है जाल तो बज तरंग जाओ जाले बखा समाह दो आहारा जाबा इस प्रभु को पहो जन्म तरा जा गया है। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कात सुनाए कब बाच दो आहारा ठाड पहो मैं जोर कर बचन का सर न्याय पंथ चला तब जगत में जाओ तुम करो सहाय दो आहारा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय संत अंत लहेंगे मुक्त बल पाव हेगे भगवंत दो आहारा काल पुरख की देह मोह कोटक बिसर मेह सो कोट इंद्र ब्रह्मा के तेह राव सास करोर जलेस दो आहारा राम कथा जोग जोग अटाल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास राग बर करा सगरी पुरी समेत चापई जो है कथा सुने और गावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिशन भगत के फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई संबत सत्रह सास पचावन हाड़ वादी प्रथम सुख दावन तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लेहो सुधारा दो हरा नेत्र तोंके चरण तार स्तर तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो राघवर कथा प्रसंग दो हरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब वो भेद कह हम एक न जान्यो श्री आस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तोहे बख

क्या मन वसा वाजे शब्द कनेरे का नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुर बेटा जिस दिया यह वडियाइया कह नानक सुन संत हो शब्द धरो प्यार हो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत उदवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख होवा तित घर आनंद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रो संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी सुन ते पुनीत कहत पवित सत गुर रहया भर पूरे बिनवंत।

संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधार जे को गावे जे को पुंचा तिसका होय उधार वस्त जी न जाय नित नित राख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसार हो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक ना मिला ता जीवा तन मन थीवा हरिया पावड़ी तथा तू सम्राट जिथा कोई नाही ओथा तेरी राख अग्नि ओ धर्मा है सुन का जम के दूत नाय तेरा छड़ जाहे भौजल बिखम सगा हो गुर सबदी पार।

दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुआ सुभत खसामदि नूर अरसो कुरसो चटी तुद डठो सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात साहो सिर सा दासाहो

ओ फुटी मां कुड़ियां नु केरे पीछे हट के बह जाओ ओ जो भी लेना लाग एदे तो छेती छेती ले लो ओ जो भी लेना लाग एदे तो छेती

चिकंद वालस कमाई चो जी प्रीतम प्यारे ओ प्यारी पुरिया लोकी कर दे कंद दे अज दीदारे ओ प्यारी पुरिया लोकी कर दे।

योग गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहर अहमत दा सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना दे अंदर आप संगतां रब्बी बाणी धुर की बाणी अकाली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी ने महान तरस कीता है हुण तक 1007 अंग सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिया की पावन बाणी आपां पढ़ी सुनी है। 1007 अंग तो पहला शब्द जिहड़ा प्रारंभ हो रहा है राग मारू दे विच्चों पंजवें पातशाह महाराज जी कृपा कर रहे हैं। मारू महला पंजवा ताज आप बिन सीताप रेण साधु थीओ तिसह प्राप्त नाम तेरा कार कृपा जिस दीओ। इथों पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। श्रद्धा प्रेम भावना अदब सत्कार सहित मन चित बिरती नूं एकाग्र करके सरवण करिए जी।

0: मागर मच्छ फहाइया कुंडी जाल बताए।
1: मागर मच्छ ही पाठ करना थोड़ा जा मागर कस के, मगर मच्छ का ही अर्थ लगता है मागर मच्छ फहाइया।

0: अंतर गर्भ उर्ध लेव लागी। सो प्रभु सारे दात करे, संसार भवजल क्यों तरै, गुरमुख नाम निरंजन पाइय, अफरियो भार अफार टरै।
1: अफरियो अफ बोल के रियो, सारा पाठ साध संगत जी है कठाई है, ऐड़े नूं अगेतर नहीं लाउणा, अफरियो जिवें उचारण कीता है, पोला पाठ करना कसणा नहीं, अफरियो भार अफार टरै।

कुछ और है। तोते मनुख ही नहीं है, तोते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये जुर्रत उसनु जो है ऐसा है। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उनु मसनद कहते हैं, पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्हां नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई, संगत ने मान सन्मान इतना दिता, इन्हां कोल हजम ना होया। इन्हां ने खुद गुरु होण दा नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद दा ते मतलब है जिन्हों तख्त मिलिया है, लेकिन सिख जगत दे च अज गाल बन गई। किसी नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जांदा है मसंद है, मेरा ही मसंद है। लेकिन मसंद दा मतलब है छोटा तख्त जिससे बैठे हैं, ये छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकां दे लई बनवाए सन, वे संगत दे उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनाण, ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संग नूं ये देख सकन, संबोधन कर सकन, ते विचार दा, ज्ञान दा, गुरबाणी दा सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। गालिब कहिंदा एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक। ये औरंग ये बादशाह दा तख्त, बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन वो तंदुरुस्त हो जांदा सी। इतिहास है अंधे दे सिर ते हथ रखिया उनू अखां मिल गईआं, और यह भी इतिहास है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया वो जिंदा हो गया। गालिब चोट करदा है, मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया, तो क्या वह फिर नहीं मरिया? जे फिर मर गया तो हजरत ईसा भी बच्चों के तमाशे करता रहा। मैं ये भी सहमत नहीं, कुछ भी नहीं, रिदियां सिदियां भी कुछ नहीं। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ, गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। इतनी वड्डी अकल है कि रिद्धि सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। रिदियां सिद्धियां जिन्हां कोल कुछ भी नहीं, ना पीर साईं कोल, ना सैयद कोल, ना पंडित महाराज कोल, सिख धक्के पै खांदे नूं उहनां कोल। ये पंडित महाराज, ये पीर साईं, ये सैयद साहब दो दिन ही साडे मसले हल कर देणगे। उंज गुरुद्वारे आणगे, कथा कीर्तन सुणनगे, मत्था टेकणगे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। उंज धागे तवीज़ां दे चक्करां च पए ने, तमाम पंजाबी दे अखबार भरे पए ने सारे। ये इंग्लिश के अखबारों च भी नहीं है, ये उर्दू के अखबारों च भी नहीं है। तीन अखबार उर्दू के इंग्लैंड निकलते हैं, जंग निकलता है, नेशन निकलता है, और सियासत निकलता है। मैं तिना च नहीं देखिया, ना ये पीर साई देखे, ना ये सैयद साहब देखे, ना ये पंडित महाराज देखे, सब पंजाबी के अखबारों से छाए हुए हैं। क्यों? सब सिख जाते हैं, सब सिख जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना तो पखंड है, जांदे उहनां कोल। मैं गुरु नानक देव जी दे दो बोल थोड़े सामने रखते हाँ, तो फिर अगे चलां तो समाप्ति करा, समा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल हमेशा चेते रखना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। ऐ मेरे भरा भाई करके संबोधन कर, मता किधर तुसी समझो किसी होर दे हाथ च भी कोई शक्ति है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कुछ भी हरी तो बिना प्राप्त नहीं आता, ना वर ना शराब, ना सुख ना दुख, जो कुछ भी आंदा है कर्मा अनुसार सब परमात्मा तो आंदा है, किसे तो कुछ नहीं आंदा। सब झूठ है, सब पखंड है। पर मैं एक दफा अर्ज कर दिया, एक तंदुरुस्त बंदे नूं भी पांच चार डॉक्टर कह दें तेनू ये रोग है, तेनू एक रोग है, उहदा मन ते पकड़ लेगा। ये धागे तवीज जादू।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते

अब मैं कौन उपाय करूं जे विद मन को संसार चूके पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधक डरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओह तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਹ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੋਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਹੋਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਓ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਸ਼ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਸ਼ੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਰਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟਮ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰ ਧਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਦੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के ढाई अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा
0: मन अपने सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भये
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में भिख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्रिया रूप न भिख नेत्र
0: साध की टैल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विख्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश है
0: केवल भगत कीर्तन संग रचय
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबराह नाम जपावे
0: नानको वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: चौवर ना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: चौवर नाम है जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाईऐ धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोची परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुब दयनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमय उदासी
1: कई कोट बीत के स्रोते
0: कई कोट तपी सरहोते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नापतन नाम त्या वहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: कोर कई कोट पर दर्भ को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: यत यत लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय
0: कई कोट पात्र बृक न बजाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि असुर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगर समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस तम सातक
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपतरे प्रभुर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहु जोनी फिर है
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मैं चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्राप्त कै हाथे
1: कई कोट भय बैरागी
0: राम नाम सख्त लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांग है सत्संग
0: ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: सत्य होए प्रभ महे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: हो वत्या तम प्रगास
1: कई कोट तत्व के बेते
0: सदा नहार एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सत सत ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: आत्म रस सुख सह समाव है
1: अपने जन को साथ साथ समारी
0: नानक हो परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करना जोग
0: जोत सभावे सोई होग
1: फिर मैं थाप उताप नहारा
0: अंत नहीं किस पारा वारा
1: हुक्मे धार अतार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन सास ते रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचार है
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी
0: खेले अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: ओ मनुख ते क्या होए आवे
0: जोत सभावे सोई करावे
1: किसके हाथ होए ता सब पिछले
0: जोत सभावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचै
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह जिस धावे
0: नमक माहे चार कुंठ फिर आवे
1: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवै नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म करीब नवाज
1: जां का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दह तिस प्रगटावे
1: जां को अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न गण जगदी
1: जीओ पिंड सब इसकी रास
0: कट पूर्ण परम प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीवे देख बढ़ाई
1: इसका बल ना ही इस हाथ
0: कल करावन सब को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: जोत स्वभाव है सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बस है
0: अब हूँ सोग हर करंग हस है
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: उबक आस प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलाव नहार
1: अब हूँ नृत्य करे बहु भांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महा क्रोध विकराल
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल
1: अब हूँ होए वह बड़ राजा
0: कभू भिखारी नीच का साजा
1: कभू अब कीर्त में आवे
0: कभू भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कभू होए पंडित करे बख्यान
0: कभू मोहन धारी लावे ध्यान
1: कभू तट तीर्थ स्नान
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कभू कीट हस पतंग होए दिया
0: अनक जोन पर में परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कभू साध संगत हि पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसै पर ब्रह्म का संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नकपति होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानक यहाँ मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हुई कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में
1: होए आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुवारी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस कौशक नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग तरवराय देश जाए
1: तब कृपा से बंधन टूटे
0: गुर पर साधना न कहा छूटे
1: सहस कटे लख को उठता वे
0: रतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नेत्र पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहाँ विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न फिर से आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पेन कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माही
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नैब खेनी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखयानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जप नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उतर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक कन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक सत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान प्रमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख न हार
0: नानक सत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बवार तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्ट है कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिस को नमस्कार
1: रब की उसत करो दिन रात
0: तिसे ते आवो सास गिरा
1: सब कछ वर्त्या तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी
1: मनुख की टीक बिरथी सब जान,
0: देवन पौ एक है भगवान,
1: जिसके दिया रह अगाही,
0: मौन तृष्णा लागे आए,
1: मारे राखे एको आप,
0: मानक कै कृष्णा ही हाथ,
1: इसका हुक्म भू सुख होए,
0: इसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए,
0: नानक बिघन न लागे कोए,
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर मन मेरे सत व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहेला कर ले जियो,
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग,
0: सह संग बिन सह सब संग,
1: चरण चलो मार्ग गोविंद,
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: अदर ज्ञान नानक उजल मथा,
1: बड़ भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे,
1: राम नाम जो करे विचार,
0: चेतन मंतगनी संसार,
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पुछाने,
0: एतो तकियो सोजी जाने,
1: नाम संग जिसका मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जाने,
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै,
0: जिसकी जानो कृष्णा बुझै,
1: सात संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
1: धन दिन कीर्तन केवल बखियान,
0: सोई निर्वाण,
1: एक ऊपर जिस जन की आशा,
0: जिसकी कटिए जम की फसा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक सन लागे दुख,
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे,
0: सो संत सोहेला नहीं जुलावे,
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवक को किसते डरे,
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया,
0: अपने कार्य में आप समाया,
1: सोधत सोधत सोधत सीजया,
0: प्रसाद तत् सब पूजे,
1: जब देखो तब सब शमूल,
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
1: मैं किस जन मैंने किस मरे,
0: अपने चलते आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट,
1: आपे आप सगल में आप,
0: अर्घ जुग त्रच था व्यथा,
1: अविनाशी ना ही किस खंड,
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड,
1: लख पे पुरख प्रताप,
0: आप जपाए था नानक जाप,
1: दिन प्रभु जाता सो सो बावंत,
0: सगल संसार उदर तन मंत,
1: प्रभु के सेव सगल उदारण,
0: प्रभु के सेवक दुख विसारण,
1: आपे मेल लय कृपाल,
0: गुर का शब्द जप भई निहाल,
1: उनकी सेवा सो ही लागे,
0: जिसनो कृपा करे बट भागे,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
1: जो किस करे सो प्रभु कै रंग,
0: सदा सदा बसै हर संग,
1: सह सुपाई हो वह सो होए,
0: करने हार पछाने सोए,
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना,
1: जिसकी उपजे तिस माही समाए,
0: सुख निदान उन्होंने।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माही
0: इसदे वृथा कोई ना है
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: आपन की कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचै कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जप एक हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: सब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए वह दाथार
0: इस देन हार जाने गावार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हम रोग
0: नानक सो

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: भाव ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरहु गोबिंद
1: मन अंतर की उतरै चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संतजना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर लेहु भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप्त हो उदहार
1: आप त्रैलो कैन स्थार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजय
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: काल जंजाल विकार के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नभी खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन के मुख भनि
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत के मन बसराम
0: ओट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊज ता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: सब

ने हथ चुक लिया औरंगजेब नू मारन वास्ते। ए तू की कीता? औरंगजेब ने उस वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उहनू बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये काम कोई और कर सकता है जिदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हरनाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना चेत पशुआं नूं मात कर गया है। 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हरनाकश कहिंदा तू जपया कर, जल हरनाकश थल हरनाकश, ताकि तैनू वेख के होर बच्चे भी जपन ते असी निरंकार करके दुनिया दे च जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दित्ती है। ध्यान नाल सुनना, निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे। ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति का ना ही तो परमात्मा है। और की है, मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होण दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। ये गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी दे। सदा वेखदा पै, सबनों वेखदा पै, सबनों सुनदा पै, सदा सुनदा पै। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोलदा पै और उदा बोल सारी दुनिया दे गूंज रहा। अनाहद ना मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जानदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहिंदा है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआं दा भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य ते अजय बनस्पति होना है। केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम ब्याह करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं कह खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 कि कौन फोन करता। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कह लग्या कि फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली? की बाई, संत बाबा धर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुँचना सी, तुसी आ रहे हो? असी पोस्टर पढ़े ने,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ।

प्रभ व्यर्था जानन हार, जाके सिमरन उदरीय नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गण हार गोपाल, सर्ब जिया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जैसो प्राणी लोचा कोए। जिसमें नाही तेरे किस काम, गत नानक जापे कहर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल घट सो है। धनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सबके तिसका दिया दरब है। हत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वह। जे को होए बह दातार, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग, नानु सो जन रोग। ज्यो मंदिर को थामे थम्मण, त्यो गुर का शब्द मने अस्थम्मण। ज्यो पाखाण नाव चढ़त रहे, प्राणी गुर चल लगत निस्तराय। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावे, त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो तुहूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइय, पुरब लिखे का लिखिया पाइय। दोख सुख प्रभ दे बनहार, अवर त्याग तूत सहज तार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे प्रे अजान। कौन बसते आई तेरे संग, लपटरे और रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पर सेती घर जाहे। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताजब मान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय महतोल। लाल खेब संत संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगह सोए। एहो वापार विरला वापार, नानक ताके सद बलहार। चरण सार के तोए तोए पियो, अर्प सार को अपना जियो। साधगी धूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान। सार सेवा वड भागी पाई है, सार संग हर कीर्तन गाई है। अनक बिघन ते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है। ओट गही संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, प्रभु लखे का लेना पाहे। सब के तिसका हो करने जोग, तिसमें दूसर हो अन होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ती ऊच निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को होए। सच करने सहायता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, ना

जसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रमन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस तै पर ना ही किस कोय सर्वनंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शांद साध तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हवन राओ मनसा पूर्ण सलना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अन ध्रुव मंगल सर जाक सर्व थोक सुनिए कर ताक राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तस्पुर का किन्यंत न पाया जाकि लीला कीमित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता के जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊ नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिरकिनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरह पूर्ण सब ठाए नाना मिल कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरसन सरवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत्य स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साध उपदेश सत जन जाकर दे प्रवेश सत नृत बुझे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बुझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक जोत सभावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तछाया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटनहार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग इकली बलागी।

अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचिरै सतगुर सिख बंधन कट है गुर का सिख बिकार ते हट है सतगुर सिख नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख जी नाल समार है गुर का गृह सेवक जो रह गुर की आग्या मन में सह आपस कहो कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवे मन बेच सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्व गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जान जन्म है पार ब्रह्म एक है अपने गच परम सह सियानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर वचन करने आगाने मन संतोख आत्म पति याने पूरा गोरे आखे हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव तिस लय मिलाए जे बाएक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल पहुंचत प्राणी अगाम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहा निरवै सुखदाई ताकि कीमत किन्ना पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरह है सदबलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हरस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरख का नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम दुख तहते नासे तपत माए ठाड वरताई अनंद भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपौ है बसे सगल बिहार मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी सार संग जप नाम रारी थित के भ्रम गवन सो नानक हर हर जसरवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभु आप बनाई अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दो जाना ही कोय सर्वनंतरे को सोए ओत पोत रविया रूप रंग भय प्रगा सार के संग राचे रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाल बिन भजना

अष्टपदी जाचक जान जाचे प्रावधान कर कृपा देवो हर नाम। सार जना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर। सदा प्रभ के गुण गाव हो सास सास प्रभ तुम्हें त्याव हो। चरण कमल स्यो लग प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक कोटे को आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार। प्रभ के दृष्ट महा सुख होय हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाखिया से जंत्र बताने पूर्ण पुरख ने डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ सार कह संग। परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगा संद लिवलाग। बड़ भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। प्रभ हो दयाल सेवक की नौसला निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनि सरदासा पूरी रव रहा सरसंग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाना है। सो क्यों बिसरै जे किया जाना है। सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन में राख है गुरप्रसार को बिरला लख है। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ है जन्म जन्म का टूटा गंढ है। गुर पूरा है ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याए। साजन संत करो काम यान त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो अवर नाम जपाव हो। भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन हो सिशार। सर्व कल्याण सुख नित नाम भूट जर पाए विश्राम।

हार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारे आपे का विस्तारे जात सुभावे ता सृष्टि उपाय अपने भाणे लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए अपन सूर सब जगत परोए जाको प्राप जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी अजंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस्ता जवर कह को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास रब लहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे बे आप परत पल है जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सत आत जिस भावे तसलै मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जान लागा हरे कहनाए तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बुझ परम पद पाई इसते उपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निरवै जय गुर के पैर एह लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले सार संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन कह सुहाओ आठ पैर प्रभेखो नेरा मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा सोने उपदेश हिरदे बसाओ मन छे नानक फल पावो हलत पल दो लिहो सवार राम नाम मंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन वसे ते साज परीखिया मन ता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह ने बैखेप तुमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बोर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे राखण हार त्याए निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राख है तिस ना ही दुख नाम जपत मन हो सुख चिंता जाहे मिटे अहंकार तिस जन पवचनहार सिरे उपर ठाडा गुरसूरा नानकता के कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लगा मीठा सगल समिग्री एक घटमाहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नव नित्य अमृत प्रभु का नाम देहि मैं इसका विश्राम सोन समाद अनहत नाद कहन जाइय चर्ज बसमाद तिण देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिजन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कलकड़ ब्याप रहे भगवंत तरन महे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बण तिन प्रभत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बसंतर माहे चार कुण द दिस समाहे जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख ससिर सुर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोला है आप अडोल न कभू डोला सर्व कलाकर खेला खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं हो बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सो बचन सर्वे आपी राम संगरचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सा मोही आप सात किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एकंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिसलै मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर है अंतर्गत जिसे आप जन आए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आपेखनहार सगल समग्री जा कातना अपन जा साप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सबके मद अलिप्त रहे जो किस कहना सो आपे कहे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जा भावे तलय समाये इसते हुए सनाही बुरा ओरे कहो कने कश करा हा भला कर तू त्यत निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साच उत्पुत अपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए तो सोझी पाए जिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक क्यों जान जो जाने तिसरा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसार सब जगत राया जन आवन कह सुव जन के संग चित आवे न आओ।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर क्यों तरह चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोट बेनती करहो सार संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे आधार उत्तम श्लोक सार के बचनाम लेख लाल हे रतन सुनत कमावत होते उधार आपतरे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाज सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरा तिनक साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु हम लाए मिट गए बैर भय सबरे ने अमृत नाम सार संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने भेखे पहमारी प्रभु की उस्तत करो संत सावधान का गरचीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोहत निदान सर्वेशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मर सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृश्यता एह

अथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मानुहा नाम तेरा संग सहाई जह महापयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहि तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत है सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत अगावै जिहे मार्ग हो जात अकेला त हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै छूटत नहीं कोट लख वाही नाम जपत पार पराही अनक बिगन जह आए संघार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मलक बुना धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधक संग जिह मार के गणे जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संगतोसा जिह पैंड है महंत गुबारा हर का नाम संगू जियारा जहां पंथ तरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महापयान तपत बहु काम तह हर के नाम के तुम उपर शाम जह त्रिखा मन तुझिया करख है तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दिल जन कोट हर जस करत संदन रात हर हर अखर सार के मात हर जन के हर नाम निदान पार रमजन की नदान मन ता रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरत बवेक है हर का नाम जन का मुक्त जुगत हर के नाम जन का तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परिण भंग हर का नाम जनकी वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन का भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को हुआ प्रभ दीना हर हर जन के ओर सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर असराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बह करे नानक जन संकेत तरे पार जात हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संत दिवसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तोलक।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भगण मैं जने बारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरद भयाऊ प्रसाग सैन मुख अपयाऊ बैठको दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बसहै सुत भरात मीत बनता संघ सहै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संघ साध बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संगरचना ऐसे दुख मूढ़ अंध ब्यापे नानक काढ़ लिहो प्रभापे आदि अंत जो राखण हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकि सेवा नवनिध पावे तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर ससरा हजूरे ताक वंदा जान दूरे जाकि टहल पावै दरगह मान तिसे बिसारे मुकदे अजान सदा सदा हो भूलन हार नानक राखण हार अपार रतन त्याग कौडी संगरचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर प्राणै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे धोए गर्द प्रीत भसम संग होए अंध को मैं पत्र बिकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपस नहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन साय समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लिहोड़ निभावे कहां बुझारत बुझै डोरा निस्कहिए तो समझे पोरा कहां बिसन प्रगावे गोंग जतन करे तो पीसुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहां उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय स्वाविन जो बहराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा हम सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत

देन हार प्रभ छोड़क लाग है आन सवाए। नानक कहू न सिजई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछा पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे। एक पीना दे दस पीहर ले, तो मुड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, तंग कीजे साध नमस्कारा। जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुखता हु मन उठा। जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगणत साहू अपनी दे रास, खात पीत बरते अण दे उलास। अपनी अमान कछु साहू ज्ञानी मनरो, अपनी पर आप ही खोवै। भरोसा विश्वास न होवै, जिसकी बस्त तस्या।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, सर्व को सुख। ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान, जैसे राजरंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जो बसदा को खुद को चन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कहे है गुनाओ, नानक जो पाव का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी ही निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास, जैसे तारी ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच ते ऊंचा, माने अपने हिसाब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जन प्रव्याप करे। सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सरा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी ही बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी ही एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ज्ञानी के नाम प्रभार। ब्रह्म ज्ञानी सरासर जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सरा नमस्कार। ब्रह्मी सब सृष्टि का कर्ता, सर जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा।

0: नाम सर्व में पेख भगवान, नानक ठाकुर नमस्कार, नानक हुआ परस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रिया रूप न पेखा नेत्र, सारगी टहल सनसंग हेत, करन सुन काहू की निंदा, सब ते जान आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टर, इंद्रिय जित पंज दोख ते रहत, कोट मदे को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाश है, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर पाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगावती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सार संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन निरपय बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम सोधै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सार संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पश प्रेत मुक्त पात्र को उतारे, सर्वरो कयोखत नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मान पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान, अपने दास को अब कृपा करे, तिस दास को सब सोजी पराए, सगल सांगी आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञातम हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर आखे तैसा तिन लाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई फुन होग, पसरे आप होय नतरंग, लखन जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करहे अनेक जान, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट है पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन परम उदासी, कई कोट वीर के स्रोते, कई कोट तपी सुर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवत नाम त्याव है, नानक करते कंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभय घातम निकोर, कई कोट परदर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लावो होते तत लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जदि जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर पे उपाय, कई कोट पाथर बिरख ने पजाय, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर्ण खेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्तम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमर तरसास्त, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किय चिर जीवै, कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख न पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरह सबूत दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: प्रभु के हाथे कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म पांते, कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभु अविनाश, कई कोट मंगे सरसंग पारब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सला धन धन, कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार कई जुगत किनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार सरासरा एक एक अंकार, कई कोट किने बपात प्राप्त है प्रमा है समात, ताका यंत्र जाने कोय अपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास तन होवते आत्म प्रगास, कई कोट तात के बेते सरा निहारे को नेतरे, कई कोट नाम रस पीव है अमर पय सर सर ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख साई समाव है, अपने जान कहो सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है।

अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहुजोन प्रमावै। भूंगा जो करै गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी है मुक्ति आगे सुख पावै। धनवंता होय कर गरबावै तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतरता का होय विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खनमय होय जय पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिठे अभिमान सो जा नानक दरगाह प्रवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व किरेन जा का मन होए कहो नानक ताके निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इस कोस को नाही कोए। जब ही जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूट है गुर प्रसाद नानक हो छूट है। सहस कटे लख कोठता तृप्तनावे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करै न तृप्तावे खप खमरै। बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए बट भागी किसे प्राप्त होए। करन करावण आपे आप सरासरा नानक हर जाप। करन करावण करण हार इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृश्य करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए। जो किसकीनो सो अपने रंग सब का संग। बूझा देख करे विवेक आपे कापे अनेक। मरे न बिन सहे आव न जाए नानक साध ही रहे समाए। आप उपदेश है समझे आप आपे रचे सब के साथ। आप किनो अपने विस्तार सब कछ उसका हो करने हार। उसते भिन्न कहो किश होए थान थलंतर अपने चलत आप करने हार। कौत करे रंग या पार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरप्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण वख्याणी।

कै। संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। अष्टपदी संत के दुखण यार जा कटै। संत के दुखण जमते नहीं छुटाए। संत के दुखण सुख सब जाए। संत के दुख नरक में पाए। संत के दुखण मत होए मलीन। संत के दुखण सुबत हीन। संत के हते को रखण कोए। संत के दुखण थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भीतर आए। संत के दुखण ते मुख पवै संतन के दुखण काग ज्यों लवै। संतन के दुखण सर्प जोन पाए संत के दुखण त्रिगत जोन करमाए। संतन के दुखण तृष्णा में जलै संत के दुखण सब को छलै। संत के दुखण ते सब जाए संत के दुखण नीच निचाए। संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावे तो ए पीगत पाहे। संत का नंदक महातताई संत का नंदक हिंटक न पाई। संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा। संत का नंदक राजते हीन संत का नंदक दुखियार दीन। संत का नंदक सर्ब रोग संत का नंदक सराब जोग। संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावे तो उसका पी होय मोख। संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी। संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते टराए। संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पवे तलै मिलाए। संत का दुखी यद बीते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर दे थोथा ज्यो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन भी जाप ही खाहे। संत के दुखी कवन राखण हार नानक संत पवे तले उबार। संत का दुखी इं बिल लाए ज्यो जल भी होन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक ईंदा नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटाए केला जंबू आड़ तिल खेत माह दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत। कीर्तनंद कातुर ही पया नानक जो सुभावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे नासा संत का दुखी उठ चले निरासा। संत के दुख न दृष्टि कोय जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटे कोय नानक जान सच्चा सोए। सब कर तिसकी करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याव सास ग्रास। सब कछ वरत है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह बिचार। जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे। बड़ भागे नानक जन से सलोक। तजहो सियाणप सुरजन हो सिमरहो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृत्ति सब जान। देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अगाए। बोहर न तृष्णा लाग आए मारे राख है एको आप। मानुख का किसना ही हाथ तिसका हुक्म भू सुखोए। तिसका नाम रख कंठ प्रोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लाग कोए। उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो सरा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग सार संग बिनसे सब संग। चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद। हर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा। बड़ भागी ते जन जग माहे सरासरा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे बिचार से त्रवंत गणी संसार। मान तन मुख बोले हर मुखी सरासरा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने त्योत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया नानक तने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सूझै तिसकी जानो तृष्णा बूझै। सार संग हर हर जस कहत सर्व
ਉਹ ਅਰਜਨ ਰਹਿਤ ਆਣ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਸੋ ਇੰਦਰ ਬਾਂ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੋ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਸਿਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸਿਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰ ਸਭ ਬੂਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕੁਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲਤਾ ਪਹਿ ਕਰੈ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖਾਣ ਹਰਨ ਤਾਰ ਰਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਵ ਜਪਾਇਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਹੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਲਾਸਲਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ ਸਾਇ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਹਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾਤਾ ਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਏ ਉਹ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣ ਆਏ

अष्टपदी टूटि गण रहार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे। हरे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछ ना होए जैसो प्राणी लोचे कोय तिसमें नाही तेरे किस काम नानक जपे कर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोर सगल घट सो है तनवंता जा सब के तिसका दिया दरब है हत को कहावै प्रभु की कला बिना कहता वै जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद उठे हों रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम थमण त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमण ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तरह ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिललाई है प्रभु लिखी का लिखिया पाई है दोख सुख प्रभु देवनहार अवर त्याग तूत सह चतार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बसते आई तेरे संग लपटरे और असलोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक परसिति कर जाहे। जिस वखर कहु लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया तज मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संत संग चाल अवर त्याग भिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुखुजल हर दरगह सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलहार है चरण सार के धोए धोए पियो अर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर करो इशनान साधु उपर जाइए कुरबान सार सेवा वड भागी पाई है सार संग हर कीर्तन गाई है अनक बिगनते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है ओट गही संत दरिया सुख नानक ते पाया मृत को जीवा लनहार भूखे को देवते आधार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे प्रभु लिखे का लहना पाहे सब के तिसका करने जोग तिस बिंदु सरहो अन होग जप जान सदा सदा दिन रानी सबती उच निर्मल है करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते होलोए जाके हृदय को होए सच करनी सहता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सच दृष्ट सच आयाकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच घर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक।

अष्टपदी अविनाशी ब्राह्मण महराख मानुख की तु प्रीत त्याग तिस्ता पर नाही किस कोय सर्वनंतर को सोए आपे बिना आपे दाना घर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शांद साध तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हिवन राव मनसा पूर्ण सलना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनदरू मंगल सर जाक सर्वथोक सुनिय घर ताक राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किरंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समात ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मह जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिद किनो विस्तार प्रव्य अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर्ण रहे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे प्रिया सब भवन नाम के संग दर्शन सरवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जाकर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे को सबता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बुझ करत विचार करत के मित न जाने किया नानक जोत सुभावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव

तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवको गुरसला दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है। को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर का गृह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आव करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बेस बिस्वै गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जान जान एक है आप, नहीं कछ भरम। सह सियानप लै आना जाइए, नानक ऐसा गुरबड भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरणगत निर्मल रीत। भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुनकर बचन कर नया गाने, मन संतोख आत्म पति याने। पूरा गुर आखे हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। जे बा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल पहुंचत प्राणी, अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी। निराह निर्वै सुखदाई, ताकि कीमत कर न पाई। अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सद बलहारी सतगुर अपने, नानक सा प्रभु जपने। एहो हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवको दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तप्त माए ठाठ वरताई, अनंद भया दुख नाठे भाई। जन मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चुका निरपौ होय बसे, सगल बिहार मन ते खाय नसे। जिसका साथ तिन कृपा धारी, सर संग जपना मुरारी। थित पाई चुके भ्रम गवन, सो नानक हर हर जस सरवण। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जन सगली मोही। अपने चरित प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सरवण अंतर एको सोए। ओत पोत रवि आरूप रंग, भय प्रगास हर के संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनक बानक बलहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, बिखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी सजना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव समीत विसार हो, चरण कमल रिद में उतारो। करन कारण सो प्रभु समरथ, दृढ़का गहो नाम हर वथ। एहो तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जा। जिस तन को चार कुंड उठतावे, सो तन हर सेवा ते पाव है। जिसो को नित बाछ मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। सो बा को करे भली करनी, सासो बा पज हर की सरनी। अनके उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हरे औखद लाए। सर्व निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह प्रवान। मन प्रबोधो हर कह नाए, दह दिस धावत आवे ठाए। ता को बिघन लागे कोय, जा कर दे बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सला सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होय आस, भगत पाया आत्म प्रगास। तित घर जाए बसे अविनासी, कहो नानक काटी जमफासी। तत विचार कहे जन साचा, जन मरे सो काचो काचा। आवा गवन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरदेव। इओ रतन जन्म कहो उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अणके उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास वेद बिचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन मनशत नानक फल पाए। संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सोतमीत कुटांबिर बनता इनते, कहो तुम कवण सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवण छुटकार। आस हस्ती राथ असवारी, झूठा डंभ झूठ पासारी। दिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, ना बिसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बडूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे।
ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਤ੍ਰਿਉ ਤਸ ਮੈਲ, ਬਿਣਸਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਹਿ ਅਚੰਤ ਬਸਿਆ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਧਰਾਂ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਅਸੁਭ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰ, ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ, ਏਕੋ ਜਾਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਾਂ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਕਰਾਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਗਏ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ।

अष्टपदी जाचक जान जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम सार जना के मांग धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाव हो सास सास प्रभ तुम्हें त्याव हो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोटे को आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्टि महासुख होय हर रस पाए बिरला कोय जिन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजे चार संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रकाश आंदे लिवलाग बड भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नुसरा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया ऐश पुन्य सरदा सा पूरी रव रहया सर संग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरा जे काल न पान सो क्यों बिसरा जे किया जान सो क्यों बिसरा जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया सो क्यों बिसरा जे अगण में राख है गुर प्रसाद को बिरला लख है सो क्यों बिसरा जे बिखत काढ जन्म जन्म का टूटा गंढ है गुर ते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याए आ साजन संत करो यो काम यान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो हर नाम जपाव हो भगत पाए तरिय संसार बिन भगति तन हो सिशार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख कहवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन ते अंतर ही सुभाव नेत्रोपेख दर्शुख होय मन बिकसे सार चरण धोए भगत जना के मन तारंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशला कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हो पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक मरि सरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए कि निम कर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम कथा मन पाई बह भोजन का पर संगीत रसना जपति हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार

अष्टपदी जब अकार्य हो कशना दृश्येता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद तब बैरबोल के साथ, जब इसका वर्ण चेहना जापत तब हरसो कह किसे व्यापत, जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कह किसोवत परम, आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कह किसको गनी, जब एक हरागा में अपार तब नरक सुर का कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सकत कह कतठाए, जब आप है आप अपनी जोत रह तब कवन डार कवन कत डराए, आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन मरण कहो कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपने आप ही चर्जा नानके अपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तो, जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छित लगत कौकीस, जह जो स्वरूपी जोर संग समावे तह किसे भूकंप त्रिपतावे, करण करावण करने हार नानक करते कना है सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व कला पे प्रवीण तब वेद कदेव कहा कौचीन, जब अपन आप उतार तो सगने अप सगन कहा विचार, जय अपनी ऊंचे अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर गुण कहिए चेरा, बिस्मन बिस्मर है बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप, जय अशल अशेदा भेद समाया ऊहा किसे व्याप्त माया, आप सको आप आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश, जह एका एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जह अपने आप आपति आरा तह कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुचा, जह आप रचो प्रपंच आकार त्यो गुण में किन्नो विस्तार, पाप पुन तह पही कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार, दोख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखयान, आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तब नानक कह, जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप, दोह पा कापे तनी उनकी शोभा अनु बनी, आपे कहो त करे आनंद चोज आपे रस भोग निर्जोग, जिस भावे तिसे अपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे, बेश

जी अजंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे का विस्तार जात सुभावे तस सृष्टि उपाय, अपने भाणे लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, अपन सूर सब जगत परोए जाको प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जिन पाए। सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सृष्टि का जेता, तर सब तथ दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राख तिस कोई न मार, सो मुँह जिस मनो बिसार तिस्ता जबर कह को जाए, सब सिर निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार नानक दास ला बलहार, पूर्ण पूर है दयाल सब ऊपर होवत कृपाल, अपने

राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण कह सुओ। आठ पहर प्रापे खो नेरा, मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा। सोने उपदेश सिर दे बसावो, मन से नानक फल पावो। हलत पल दो लिहो सवार, राम नाम अंतर उर तहार। पूरे गुर की पूरी देखिया, जिस मन बसै त साज परीखिया। मन त नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह ने बैखे तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाहे। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार ते आए। निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छूटै। प्रभु राखै तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवर सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार। सिर उपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहत निहाल, ताके निकट नयावत काल। अमर भए अमरा पद पाया।

सतगुरु जी महान कृपा करनी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमगा वालों तन मन धन करके सेवावां कीतियां गईयां ने हाजरियां भरियां गईयां ने सरबत दियां हाजरियां सेवावां भेटा।

नानक करके गोले जबलो नहीं पागल लारी उदय तबलो परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पुछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो जपियो दिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो।

एहन सहज सुभाई दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह चटिया उद डिठे सच्चे पातशाह मल

पवन नाभी नाल टकरांदी है। देही माठी बोले पवन, असी बोलते हैं पवन तत् करके, बोलना पवन तत् की प्रकृति है। इस वास्ते पवन नू बाकी तत्तां विच गुरु कहा है। अगर मनुख बोले ना तो संबंध जुड़ते नहीं, बोल के ही संबंध टुटते हैं, बोल के ही संबंध जुड़ते हैं। टुट गई प्रीत बुर बोल, एक बुरा बोल बोलिया कई साल की दोस्ती दुश्मनी च बदल गई। गंड परीति मिठे बोल, एक मिठा बोल बोलिया उपरा मनुख अपना हो गया। मनुखी दुनिया च खेड सारी बोलां दी है, ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहिंदे ने देही माठी बोले पवन। जैसे मन विच फुरना पैदा हुंदा है बोलना है, पवन नाभी नाल टकरांदी है। नाभी थोड़ी जिहा खुलदी है, जैसे खुलदी उत्थों आवाज उठती है, उस आवाज नूं कहिंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वह जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों अखर मिलते हैं, फिर इन कहते ने पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना, उही आवाज जब कंठ तक पहुंचती है इन्हों कहते ने मधमा। पूरा वाक बन जाता है जो जबान ने कहना है, ते जबान बयान कर देती है। इन्हों कहते ने बैखरी, परा पसंती मधमा बैखरी। नाभी तो आवाज कदों उठती है जब पवन टकरांदी है, पवन कदों टकरांदी है जब मन विच फुरना पैदा होवे बोलना है, बोलना है। पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाभी तो धुन उठती है, हृदय तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं, ये कम सारा तेजी नाल ऑटोमैटिक होंदा है। इनू पसंती कहते हैं। ये फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है जो कहना, इनू मधमा कहते हैं, ते जबान बयान कर देती है, इनू बैखरी कहते हैं। परा पसंती मधमा बैखरी, ये जिहड़ी बैखरी बाणी है वाहेगुरु वाहेगुरु बैखरी है। हुण इहनू परा करना है, जिथों यह धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इहनू गुरबाणी इंज कहिंदी है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इसनों उत्थे ही लै जाना जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है उसे जगह ते वापस लै जाना। अक्सर दरिया 100% करीबन पहाड़ां तो निकलदे ने, उचाइयां तो आंदे ने, ते दरिया नूं पलटा के उत्थे ही लै जाना जिथों निकलिया है कठन है, कठन। जमीन दे उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकदा, होया नहीं, अज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है, गंगोत्री तो बद्री नारायण तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है, एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंगे ने, ये जरा थोड़ी जी घट, लेकिन उस वर्ग ही है, उतनी बिखड़ी है। उत्थों निकलती है ये गंगा, और कबीर कहते हैं जिथों निकली है उत्थे ही लै जाने, पलटा के उत्थे ही लै जाना। ये धुन जिथों उल्ट निकली है पलटा के वापस ले जानी है। धुन जो नाभि तो उठी है, जबान दे राही प्रगट हुई है, कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गई। इस धुन नो जबान दे नाल बार प्रगटाना बड़ा आसान है, सारा दिन गपशप चलती रहती है। वाहेगुरु वाहेगुरु भी दो दो घंटे चलता रहता है, ये भी मैरज कर दें। इको दफा वाहेगुरु आखण नाल मनुख वाहेगुरु का रूप हो जाता है, इको ही दफा। एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं इंज कह दें, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आख दें, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखदें करोड़ा पाप मिट जाते, करोड़ा दुख मिट जाते। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौख है, सौख है, बहुत सौख है। एक दफा वाहेगुरु आखना बहुत औख है, बहुत औख है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने औख है, पर करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना है, मता किधरे एक दफा वाहेगुरु कहण दी जाच आ जाए, बस इन्नी गल। खेड़ एक दफा नाल बनेगी, दो दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम

0: रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों विच प्रगट होंदा है, तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य? यही मनुख है, रोग विच जीवे, सोग विच जीवे, चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारा फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयंग तरंगं अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहने जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा हो, ज्वालामुखी अग विच जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच डुब रहा हो। इंज कह रहो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहिंदे ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे स्वास्थ्य कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जब कोई चढ़दा है एक औघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनती है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनती है। राम रस ते काम रस इज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नू जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जांदी है तो भगवान नू जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नू भी जन्म देंदा है, भगवान नू भी जन्म दे सकदा है। संतान नू जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नू जन्म देण दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जांदे ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा जद कोई भगवान नू जन्म देंदा है। और भगवान नू जन्म देना की होंदा है, उस स्वयं भगवान मई हो जांदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाने। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए? रोग विच जीविए, सोग विच जीविए, इस तो छुटकारा हो सकदा है। बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान विच यही अंतर है। फ्राइड जैसा दार्शनिक कहिंदा है, काम देखते जीवना ही पड़ेगा, हंकार देखते जीवना ही पड़ेगा, लोभ देखते जीवना ही पड़ेगा। ये मनुख की शक्ति है और अपनी शक्ति ना लड़के मनुख बच नहीं सकता। ये तो एक महान ताकत है। लोभ इस को कुछ करवाना चाहता है, हंकार इस को बहुत कुछ करवावेगा, काम भी इस को बहुत कुछ करवावेगा। इस देश से जीवना पड़ेगा। बस भारत दा मनीष कहता है नहीं, इस तो बचिया जा सकता है, इस तो उच्चा उठाया जा सकता है। करीबन करीबन पश्चिमी विद्वान ऐसा कहते हैं कि भारत दे मनीष बहुते कल्पनावां विच ने, कल्पनावां विच ने। कि भारत दी मनीष दी भाषा जे बोलीए तो कह सकते हैं पश्चिमी विद्वान किसी हद तक भुलेखे विच ने, अज्ञान विच ने, ना समझी विच ने, दानिशमंदी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। ओते कह रहे ने ए भारत दे मनीष कल्पना दी दुनिया दे जी रहे ने, कल्पना दी दुनिया जी रहे ने। पर कौन इना नु दसे? कहंदे ने उस दी ते कल्पना भी नहीं कीती जा सकती जो है नहीं, जो है नहीं। अगर प्यास है तो पानी जरूर है, भुख है तो भोजन जरूर है। जीवन विच परम सुख दी जे प्यास है तो परम सुख है, परम सुख है। परम आनंद दी जे तड़प है तो फिर परम आनंद है। ओ कहंदे ने टोल टोल के खोज खोज के ऐसा देखे धन मिले है, संपदा मिली है, और तरह तरह दे पदार्थां दे अंबार लगे ने, सुख ते नहीं मिले, किधरे भी नहीं मिले। अधूरी सच्चाई ते उन्होंने भी कबूल, हुण ते मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 60% बीमारियां साडे काबू विच नहीं है, नहीं है। मानसिक रोग विच जीवना बस यही मनुख दी जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, एक परम जीवन है, ऐसा जीवन जेदे च जन्म दा दुख नहीं है, जेदे च मरण दा दुख नहीं है, और जिस दे च तीजा दुख बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं है। कुछ ना समझ ऐसा कहंदे ने कि क्यों मनी है, जीवन दुख है, शरीर रोग है। चंगे भले कई स्वास्थ्य शरीर दिखाई देंदे ने, गुरबाणी नहीं मनदी। अगर स्वास्थ्य दिखाई देंदे ने तो एक दिन बुढ़ा किस तरह हो जाता है? आखिर बुढ़े होने का बीज तो इस दे अंदर पे है, तो जिहड़ा बीज इसनु बुढ़ा कर सकता है उन्हु रोग कहा जाएगा और की आख्या जाएगा। जिहड़े स्वस्थ दिखाई देंदे ने वास्तविक उन्हां दियां थोड़ी जियां बीमारियां सीमा विच ने, या औषधियां खा खा के रोग नु वो सीमा विच कर लैंदा है ताकि पीड़ा महसूस ना होवे, रोग ते खत्म नहीं होए। अगर रोग खत्म हो गए ने तो फिर बुढ़ा किस तरह हो सकता है? फिर बुढ़ेपा तो एक ऐसा रोग है, इसनु सीमित करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। ये तो वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। भारत के सारे संत कहंदे ने बुढ़ेपा स्वयं अपने आप विच एक रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। मन विच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलन दी समर्था पैरां विच नहीं है। मन विच बड़ी प्रबल वासना है पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहिंदे ने एक जवान दी पीड़ा नालों हजारां गुणा वध पीड़ा हुंदी है बुढ़े कोल। क्यों? जवान नालों हजारां गुणा वासना उसकी वध गई है, उम्र दे नाल नाल वासना वधदी है। ते उन्हां वासनावां दी पूर्ति कर सके शरीर साथ नहीं दिंदा, शरीर साथ नहीं दिंदा। इस वास्ते बुढ़ा बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बड़ी मानसिक पीड़ा हुंदी है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उथे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा हुंदा है, जीवन दे होंदे होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे होया मौत तो किवें बचीए, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए, इना रोगां तो और में छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बचीए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीम, जिन भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक फिर नहीं कोए। पर जिन्ना अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है ये अर्थ नहीं है। अज तक जिन्ना अर्थां विच इस नूं पढ़िया जा रहा है ये अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उस दी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने ए अर्थ नहीं है। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण ने, ऐसा नहीं होना चाहिदा मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिदा है मैं चाहना। पहले इस गल दे चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सब, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे दी तरह हो जावा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ये आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना होवा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। एक बुढ़ा ये आखे मैं कदी नहीं मरा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है, पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है और धन गुरु नानक देव जी महाराज नो विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है या वेला बैठा है, बैठा है बहुत काल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य की चिंता विच, ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूत काल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिदा है, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा, ते मन नूं भज्जण दौड़न वास्ते समा चाहिदा है। मन दी भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय च दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा, अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनता है, आनंद उदों बनता है जिथे मन किसी संगीत दी धुन विच, किसी नृत्यकार दी कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर धुने विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जाता है, अनंत बन जाता है, पर सदीवी टिकाऊ नहीं आता। क्यों? मन भटकदा है समय विच, कि समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल, पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है, पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां, सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे हां। ना बोध हेच निशान हां से जमीनो आसमां, कि शौके यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा? ऐसा एक सूफी संत ने भी आखे, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम। ऐ खुदा, कोई मैं अजदा आशक, अज दी तेरी तलाश कर रहा, अचेतपणे सुचेतपणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजय माया रूपी संसार भी तो नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम, ए आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी, मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नु भटकण लई समा चाहिदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहिंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां ही जो है चिंतावां तो एक पासे हो, मन नूं लिया किथे लिया? वर्तमान विच, वर्तमान विच। भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान विच मिलेगी, और ओही भगवान दी झलक वर्तमान नूं भी बिठा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल यह पैदा होता है, भविष्य और भूतकाल नु किवें मिटाई है? इत्थे हर थां ते पीछा करदा है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्खां च बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है, क्योंकि मन नु दौड़न ते भज्जण लई समां चाहीदा है। भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है, तो पहले समझिए वर्तमान किन्ना क है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, हम आदमियां एकदम ही मौलत मौत न जाना, वर्तमान एकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एकदम है जो मेरे मुंह च है, सारिया के मुंह च है। जिड़ा दम अजे आया नहीं, वो ते मेरा भविष्य है, ते जिड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो, वो ते भूतकाल है। जो दम चला गया इन मैं खर्च नहीं कर सकता, जो दम अजे आया नहीं मैं उसनु वर्त नहीं सकता। एक दम तो इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, एक दम विच की कर सकदे आ? एक दम विच कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एक दम विच कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एक दम विच कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एक दम विच कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। पर गुरु नानक कहिंदे ने एक दम विच परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, जद भी मिलेगा एक दम विच, क्योंकि एक दम नकद है ते धर्म दा सौदा परमात्मा दा सौदा नकदी नाल आउंदा है, नकदी नाल आउंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम विच पूरे हो जाते हैं। राम एकदम विच पूरा हो गया, ओम एकदम विच पूरा हो गया, अल्लाह एकदम विच पूरा हो गया, वाहेगुरु एकदम विच पूरा हो गया। करोड़ दफा वाहेगुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा, करोड़ दफा वाहेगुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा पाप मिट जाणगे, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा दुख मिट जाणगे। ये तो फिर पहेली हो गई, नहीं पहेली नहीं। सारे महामंत्र एकदम विच पूरे हो जाते हैं, वाहेगुरु एको ही दम की लोड़ है। हुण मेरा सारा ध्यान इसी मंत्र दे सुनन विच आ जाए, वाहेगुरु। और जैसे मैं एकदम विच आवांगा, सारे दे सारे ध्यान नू लियावांगा, इसे नू ध्यान साधना कहंदे ने, तो भूत काल खो जाएगा, भविष्य खो जाएगा, वर्तमान ने भगवान नू प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने, बेद कतेद इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। एकदम विच टिक जाओ, खुदा हाजर नाजर है, परमात्मा हाजर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसे तरीके नाल वर्तमान विच आईए, बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान विच नहीं जीवदे, भविष्य दीआं चिंतावां विच जीवदे ने, बड़े बड़े सियाणे मनुख वर्तमान विच नहीं आउंदे, भूतकाल दीआं यादां च बैठे हुंदे ने। और एक दफा मनुख वर्तमान विच आ जाए कि वर्तमान सिर्फ एक दम है, उस दिच आमदेया मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जांदा है, तन रोग है मन सोग है, रोग सोग तो उच्चा उठ जांदा है, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने, उस हरी जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जांदा है। नानक बद्दा घर तहा जिथे मिर्त ना जन्म जना, एक वर्तमान दिच आमदेया अगला जन्म नहीं होवेगा, मरण नहीं होवेगा। और ये जड़ा जीवन कोल है इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा, यही एक साधना है और यही औषधि है, यही औषधि ईशान विच भ्रमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंड दे रहे। बाबा फरीद भी कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया। अज मिलावा ले तो अज तो मुराद की अज दा सारा दिन कता ही नहीं, अज तो मुराद वर्तमान, वर्तमान तो मुराद एकदम एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहंदे ने, यकदम बखेश राना बुरदम के कीशतम, ए वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी, ते नकद जिंदगी की सी जिड़ा मेरे मुंह दे च दम सी, नकद सी जिड़ा दम आया ने उधारी सी, जिड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो तो खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ एको ही दम है, एको ही दम है, नकदी मेरे कोल एको ही दम है, एको ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है, नहीं, एक दम दे परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे सारा जहान मिल सकता है, एक दम विच सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम विच परम रस मिल सकता है। पर मनुख इस एक दम नू किवें बतीत करदा है, इसे एक दम नू बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद विच, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਔਰ ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਇਗਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਇਗਾਂ ਗੁਯਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ, ਬਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਤੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 50 ਹੈ 40 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 40 ਹੈ 30 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸਤਰੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਸੀਖੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀ ਜਾਨ। ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ। ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਬੈਂਗਣ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀ, ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਮੈਂਗੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਔਰੰਜ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ,
2: ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਏ, ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਏ, ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਏ, ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हों मैं रोग मानक को दीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: ऐसी भले खाना आए, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: जिंदगी दा हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
2: तुहाडा घर, तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट, तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
3: इसनु खरीदन जा वेचन ले तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
2: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
3: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नु
2: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।